एकता वतन की रोशनी और आवाज। नमस्कार प्रियश्रोताओं, आज का हमारे कार्यक्रम राष्ट्र एकता दिवस को समर्पित है। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्र एकता दिवस के 19वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर के आपके घरों में हमेशा शांति, प्रेम, आपसे सद्भाव, खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम अपने प्रिय तजिकिस्तान के लिए स्थायी शांति, अतुट राष्ट्र एकता तथा सुख समृद्धि से भरपूर जीवन के कामना करते हैं। राष्ट्र एकता दिवस के हृदय शुभकामनाएं प्रिया देशवासियों।

इतिहास ने सिद्ध किया है कि शांति अपने आप स्थापित नहीं होती। इसके प्राप्त करने के लिए दूरदर्शी और विवेकपूर्ण नीति, जिम्मेदारी की भावना तथा व्यक्तिगत और समूहगत हितों से ऊपर राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी कारण तजिक जनता का शांति और स्थिरता के लिए किया गया प्रयास एक मजबूत आधार बन गया, जिसे सारे राष्ट्र मिल मिलाप राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुए। सन 2024 में इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने की 19 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों के दौरान तजिकिस्तान की जनता ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है कि शांति सबसे बड़ा वरदान है और राष्ट्र एकता राष्ट्र के सबसे मूल्यवान उपलब्धि है तथा सबसे बड़े संपत्ति है। ये 19 वर्ष व्यापक निर्माण राज्य के स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने, सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने तथा तजिकिस्तान गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने का कलन रही है। यह अवधि राज्य और राष्ट्र की शांति तथा एकता आधारित नीति के सफल परिणामों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

राष्ट्रीय एकता का मतलब पूरे देश के लोगों का एकीकरण एक आम पहचान के लिए है। राष्ट्रीय एकता न केवल एक मजबूत देश के गठन में मदद करती है बल्कि अपने लोगों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के दो सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते तीसरे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता माधव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

ताजिक और हिंदी संस्कृति बहुत मिलती जुलती है, इसीलिए ताजिक और हिंदी लोग एक दूसरे की कला परंपराओं, नृत्यों और गानों में शौक रखते हैं। ये गाना जो आज आपके लिए हमने पेश की, कई गायकों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, परंतु समय की कमी के कारण सबसे प्रसिद्ध गायकों की प्रस्तुति को हमने आपके लिए पेश की। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा गाने को सुनकर। आना

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

एकता वतन की रोशनी और आवाज। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज का हमारे कार्यक्रम राष्ट्र एकता दिवस को समर्पित है। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्र एकता दिवस के 19वीं वर्षगांठ पर हृदिक शुभकामनाएं। ईश्वर के आपके घरों में हमेशा शांति, प्रेम, आपसे सद्भाव, खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम अपने प्रिय तजिकिस्तान के लिए स्थायी शांति, अतुट राष्ट्र एकता तथा सुख समृद्धि से भरपूर जीवन के कामना करते हैं। राष्ट्र एकता दिवस के हृदय शुभकामनाएं प्रिया देशवासियों।

इतिहास ने सिद्ध किया है कि शांति अपने आप स्थापित नहीं होती। इसके प्राप्त करने के लिए दूरदर्शी और विवेकपूर्ण नीति, जिम्मेदारी की भावना तथा व्यक्तिगत और समूहगत हितों से ऊपर राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी कारण तजिक जनता का शांति और स्थिरता के लिए किया गया प्रयास एक मजबूत आधार बन गया, जिसे सारे राष्ट्र मिल मिलाप राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुए। सन 2024 में इसे ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने की 19 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों के दौरान तजिकिस्तान की जनता ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है कि शांति सबसे बड़ा वरदान है और राष्ट्र एकता राष्ट्र के सबसे मूल्यवान उपलब्धि तथा सबसे बड़े संपत्ति है। ये 19 वर्ष व्यापक निर्माण राज्य के स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने, सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने तथा तजिकिस्तान गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने का कलन रही है। यह अवधि राज्य और राष्ट्र की शांति तथा एकता आधारित नीति के सफल परिणामों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

राष्ट्रीय एकता का मतलब पूरे देश के लोगों का एकीकरण एक आम पहचान के लिए है। राष्ट्रीय एकता न केवल एक मजबूत देश के गठन में मदद करती है बल्कि अपने लोगों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

हाँ, जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी, प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी ये डरता नहीं, लुट जाएंगे मिट जाएंगे मर जाएंगे हम, जिंदा रहेगी हमारी दोस्ता।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के दो सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते तीसरे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता माधव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

कोई हसीना जब रुक जाती है महबूबा महबूबा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हाँ जब तक है जा होली के दिन दिल खेल जाते हैं इस मूवी के गाने हैं शोले का गाना जब तक है जा गाने का गायक लता मंगेशकर संगीतकार राहुल देव बुर्मन गीतकार आनंद बख्शी कलाकार हेमा मालिनी धर्मेंद्र अमजाद खान है इस गाने में हेमा मालिनी ने एक अच्छा डांस भी किया है जिसको लोगों ने पसंद की थी नोजिया करमतलो प्रसिद्ध ताजिक गायिका है जिसको न केवल ताजिकिस्तान बल्कि दूसरे देशों में भी सुनकर पसंद करते हैं विशेष रूप से हिंदुस्तान में नोजिया करमतलो ने भारत में संगीत सीखी थी और भारत में रहते समय इस कला को बारीकी से अध्ययन किया था अपने पहले कॉन्सर्ट में उसने कई हिंदी गाने दर्शकों के लिए पेश की थी जिनको लोगों द्वारा पसंद किए गए उनके बाद नोजिया ने दूसरे हिंदी गाने पेश करने लगे जो न केवल हमारे देश में बल्कि हिंदुस्तान और हिंदी गानों के प्रेमियों के बीच मशहूर हो गए हिंदी गानों में से एक हाँ जब तक है जाने जहाँ है जिसका एक पार्ट आप पेश करेंगे

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।